साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: Listener's Choice, brought to you by Star Plus, Star Gold and Star Bharat.
1: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत. चैनल पार्टनर टॉप अप फूड्स एंड परी बासमती राइस.
2: The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk.

कीता दी मशीन बैड बॉय ऑन द ट्रैक बेबी करे बाउंस जैसे हिटर होके चेक सर पे है क्राउन बेबी नो कैप सिक मेरी ट्रिप मेरी सिक वो कैप बच्चे बच्चे गोरटे मेरे रैप बेबी माइंड होते ब्लो जब बीट करे स्लैप

0: This is the UK's biggest Asian mix. This is Sunrise.
1: प्यार पाया तेरे नाल तू ता मैनू कला छड़ता हाँ यादा नाल

0: athlete, scientist, doctor, astronaut, for whatever they want to be in life. Give them a great start with WellKid. Carefully balanced vitamins and minerals for children from 4 to 12 years old in great tasting natural fruit flavors that they will love, with specific nutrients such as zinc and vitamin D, which support normal immune system function. The WellKid range from Vitabiotics, the UK's number one vitamin company, available from Boots, pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.
1: अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
1: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
1: और हमारे सोने की वैल्यूएशन।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में दो ब्रांचेस के साथ,
3: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल, सबसे सोना सड़ा सोना।
2: वसीम ज्वेलर्स।
4: This is a